0: का गोल्ड
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
4: You know how fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
7: Bollywood ke legend kalakar, sirf Leica Gold par.

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे

मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

होए। मने सुत होवे मन बुद्ध, मने सगल पौन की शुद्ध, मने मोह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मने मार्ग ठाक ना पाए, मने पथ स्यों प्रगट जाए, मने मग ना चले पंथ, मने धर्म से।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी होसी।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख।

जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कछ पका।

0: Place of London. This is Cardinal on Breakfast. Leica Gold, traffic and travel.
1: Good morning. A faulty train at Whitechapel means severe delays on the District Line westbound between Upminster and Earls Court. The District Line also affected due to late finish of engineering works as well between Earls Court and Wimbledon. And also affected by that faulty train is the Hammersmith and City Line as well. Severe delays there at the moment, so keep that in mind if you're travelling that way. M25 in Kent is partially blocked at Junction 2. But the Darrington interchange is due to a broken down vehicle. Only one lane closed there now though, so traffic looking slightly better. And the M4 onto the elevated section at Brentford as well. Got a travel time of 10 minutes heading east there. That's your latest traffic and travel.
2: Join us at the Mercedes-Benz Vans Advantage event from the 14th to the 23rd of September. Order your new or approved used Mercedes-Benz van and unlock unmissable event-exclusive offers. And that's on top of existing offers across the range. Your Mercedes-Benz van is waiting for you. Take advantage and drive your business forward. Search Mercedes-Benz Advantage online and book your appointment at your local dealer. Mercedes-Benz Vans. We've got your back. Offers end 23rd of September. Selected models subject to availability at participating dealers. T's and C's apply.
3: Yeah, like a gold. Like a gold.
4: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
8: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
9: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
8: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
9: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
10: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हंस तो मेरी जान।
4: बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच अ लाइव फीड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस एक्सक्लूसिवली ऑन जियो हॉटस्टार।
11: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
11: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु,
13: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
11: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र शीघ्र।
13: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
15: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक online at Eventbrite.
16: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
17: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: माने दिलदारा।
18: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
19: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
20: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
21: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
22: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, नाउ अवेलेबल ऑन द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप एलेक्सा।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: हमारी रक्षक है वो।
6: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
7: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
6: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया, इन सिनेमास फ्राइडे 25th September। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
2: One day to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network. Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन Leica Gold Greater Manchester एंड Leica Radio Midlands पर.

ना के और सुनो एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ,

0: रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: संगीत साधना है, संगीत आत्मा की आवाज है।
2: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं,
1: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए।
3: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान।
4: सारेगामापा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से, शनिवार और रविवार 7:30 बजे UK, आपके अपने जी टीवी HD और Z5 ऐप पर।
5: द वेट इज ओवर, प्रख्यात स्पाइस विलेज हवे हैरो मा खुली गयु छे। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, स्वादिष्ट कराहियो अने तंदूर माथी निकलेला गरमा गरम फ्रेश नान, साथे सौथी मोटा वेजिटेरियन मेन्यूज माथी एक अलग वेजिटेरियन किचन मा तैयार। तो फैमिली अने फ्रेंड्स ने साथे लावो अने माणो स्पाइस विलेज नो अवॉर्ड विनिंग स्वाद। आवो 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो, स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खावा मळवा अने सेलिब्रेट करवानु तमारु नवु सरनामु।
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
8: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
9: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
10: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
9: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
11: ऑफिशियल टीवी पार्टनर ZTV, एन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
12: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956-154-846.
13: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
14: I left behind everything I knew.
13: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
14: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
13: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
15: One day to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network. Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
16: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: है
1: Lyca Gold
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
0: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: विजिट TravelHubWorld.com
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरीना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन ऑफिशियल टीवी पार्टनर ZTV एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Lyca रेडियो नेटवर्क
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new properties Dubai London office today on 0203-963-5757. To arrange your meeting.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-776-333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
12: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
13: Lyca Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th. Lyca Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: Gold Breakfast with Kajal.
15: Lyca Gold.
13: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Lyca Radio Network.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
4: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
5: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ बधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-287-509.
6: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 0734-520-666. Cow's Choice Pure Ghee. Har chamach mein
7: shudh desi swaad. 0730099823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
8: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
10: One day to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network. Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

शुक्रवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 18 तारीख एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त आपका होस्ट रवि शर्मा स्टूडियो में हाजिर है। आप सब की ओर से पहले तो भाई थैंक्स कहूं काजल को। शिल बी बैक ऑन मंडे।

0: बहुत सारे लोगों का जन्मदिन, कई लोगों की शादी की सालगिरह, किसी की जिंदगी में कोई खास महत्व लेकर के आज का दिन 18 सितंबर शुक्रवार। और साहब अगर देखें तो दिन जो है साल का ये 261वां दिन है, 104 दिन अभी बाकी है इस वर्ष के। एक एक दिन, दिन का एक एक लम्हा जीना है हमें, क्योंकि जो क्षण गुजर गया मर गया, लौट कर नहीं आएगा। आइए तैयार हैं हम आपके साथ साझा करने के लिए आज के दिन का एक एक पल। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि, भाई अष्टमी शुरू होने वाली है, और अष्टमी ये साधारण अष्टमी नहीं, राधा अष्टमी है, चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिलहाल तो कार्यक्रम शुरू करें, इजाजत है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. London's number one Asian retro music station. Leica Gold is 5.
0: प्रोग्राम के शुरू में ही एक बात कहूं, दिल में है एक बात कहूं तो करार हो, चलो थोड़ा साथ अगर एतबार हो। मैं बस इसी ख्याल से मिलने गया उसे, शायद उसे भी आज मेरा इंतजार हो। मैं आ गया फरेब में एक रुत के दोस्त, यूं पतझड़ के बाद आई है शायद बहार हो। गरमान जाए तो ये समझना हुआ नहीं, दिल मानता नहीं है अगर दिल में प्यार हो। दौलत का, मोहब्बत का, अकीदत का, हुस्न का, अच्छा नहीं है दोस्त किसी का खुमार हो। ये दिल मेरा है अब भी चरण मुंतजिर तेरा, आ लौट गया दिल पे अगर इख्तियार हो। प्यार करेंगे, बेशुमार करेंगे हम।

0: Tomato food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Celebrate Ganesh Chaturthi with Shiv Shakti Ganesh Mandal UK. Join us on Saturday the 19th and Sunday 20th of September at Richard Challoner Secondary School in New Malden. Enjoy Ganesh Puja, live bhajan jamming, mantra chanting, aarti, prasad and Ganesh Visarjan. Entry is completely free, so bring your family and join the celebrations. Special guest Bali Brahmbhatt. For more details, contact Kanchan Sharma on 07-429-683-913. Radio partner Leica Gold.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
9: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
10: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
14: One day to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: और बहन भाइयों, आज है 18 सितंबर और पता चला है कि आज फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्मदिन है. आजमगढ़ में जन्मी थी 1950 में. कैफी आजमी की बेटी और भाई अब जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. अब आप हंसना नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि शबाना के साथ भी काम करने का मौका मिला उनके पति जावेद अख्तर साहब और जगजीत सिंह तीनों के साथ एक जगह भाई यहाँ लंदन में प्रोग्राम पेश करने का अवसर मिला. क्या घड़ियाँ थी वो, क्या क्षण थे. और साहब शबाना को हैप्पी बर्थडे तो बाली भाई भी कह लेंगे, वो उनके बारे में जानकारी जुटा के लाएंगे. आज श्रुति हसन भी अपना जन्मदिन मना रही हैं. श्रुति हसन फिल्म अभिनेत्री, लेकिन साहब फिल्मी हस्तियों के जन्मदिन तो बाली भाई मना लेते हैं. हम असली हीरो का क्या करें, जन्मदिन मनाएं, उन्हें श्रद्धा से याद करें. और उस असली हीरो का नाम है मदन लाल ढींगड़ा. अमृतसर में जन्मे थे 1883 में. आज के दिन शहीद मदन लाल ढींगड़ा, स्वतंत्रता सेनानी. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर, भाई कुछ ऐसे शहीद हुए हैं जो 25-26 साल की आयु में, 20-21 साल की आयु में इस देश के लिए शहीद हो गए. शायद उन्हीं की बदौलत आज हम आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं.
4: लाते हैं दुल्हन सभी

0: शहीद मदन लाल ढींगड़ा को समर्पित ये गीत भाई, अपने देश से कितना प्यार था उन दीवानों को। तुझ पे दिल कुर्बान जान कुर्बान, स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगड़ा।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और बहन भाइयों, अब एक सूचना, और ये सूचना एक उत्सव के विषय में, एक शो के बारे में, एक प्रोग्राम के विषय में। फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स आर लाइका रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन 27th ऑफ सेप्टेम्बर। Doors open at 4:30 PM with a student pre-show from 5 PM to 5:45 PM and the main performance from 6:15 to 9:30 PM. Tickets www.diwalistory.com. देखना मत भूलिएगा भाई, बड़ा ज़बरदस्त शो रहेगा ये, क्योंकि इसका एक जो कहते हैं ना ट्रेलर टाइप, वो हम देख चुके हैं। पूरे लंदन में घूमते हुए कलाकारों ने प्रदर्शन किया था, भारी भीड़ जुटाई थी। राइट, अब समय हुआ जाता है समाचारों का।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: कहाँ से शुरू करें भाई? एक तो भाई, ब्रिटिश वुमन किडनैप्ड इन मलावी, रेस्क्यूड एंड रिटर्न्ड विद हर फैमिली, ये खबर ये यहाँ की। और साहब, इसके अलावा बकिंगम पैलेस से जो विवाद शुरू हुआ है, जो स्वर्गीय प्रिंसेस डायना के भाई ने अपनी किताब में कुछ क्लेम करके किया भाई, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और सवालों के घेरे में वो खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं सम्राट को, जो समय प्रिंस चार्ल्स से उनके पति। इसके अलावा भाई, आम समाचारों में, नेशनल और इंटरनेशनल समाचारों में क्या क्या है, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। इसराइल ने साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों पर फिर से हवाई हमले किए हैं। पता चला है कि लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने ही बताया है कि इसराइली फौज ने दक्षिणी लेबनान में कई एयर अटैक किए हैं। इस खबर के मुताबिक इसराइली हवाई जहाज़ों ने कल बृहस्पतिवार की शाम को तालुसा इलाके को निशाना बनाया और कंतारा के झंझल इलाके में भी दो हमले किए। क्रिकेट की बात करें, इसलिए कि भाई एशियन गेम्स क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने महिला क्रिकेट के आखिरी क्वार्टर फाइनल में जापान को हरा दिया, पर क्या खूबसूरती से हराया। आज खेले गए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की 8 विकेट से हार हुई। जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रन ही बना पाई, जबकि भारत ने यह टारगेट 5 ओवर में हासिल कर लिया। हालांकि उसे 2 विकेट खोने पड़े, लेकिन भारत की तरफ से भाई मेरे शहर की उस कन्या शेफाली ने 14 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए और ऋषा घोष ने 6 गेंदों पर 12 रन बनाए, दोनों नॉट आउट रही। और इस तरह से भाई वो अब क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर गए हैं, क्वार्टर फाइनल में जापान को हरा दिया, सेमीफाइनल में एंटर कर गए हैं। क्रिकेट की एक और खबर आगे चल करके देंगे। दक्षिण कोरिया का हॉर्मुज स्ट्रेट में फौज तैनात करने से इनकार आ गया है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्योंग ने आज कहा कि उनका मुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी फौज तैनात नहीं करेगा। पता चला है कि राष्ट्रपति ली ने यह बयान दिया है कि मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि हम किसी भी तरह की फौजी तैनाती नहीं करेंगे, हम किसी भी जंग में भाग नहीं लेंगे और ना ही उसमें शामिल होंगे। बता दें आपको कि 2 सप्ताह पहले ईरानी विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगाई ने साउथ कोरिया को वार्निंग देते हुए कहा था कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में अन्य पक्षों की कोई भी परिचालन या भागीदारी जो है वो समर्थन देने के बराबर होगी और इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, हमें स्वीकार नहीं होगा। मुज्तबा खामनेई के सलाहकार ने कहा है कि जब तक ट्रंप और नेतन्याहू सत्ता में रहेंगे हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के पॉलिटिकल एडवाइजर मोहम्मद बाकिर जौलकदर ने कहा है कि जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है उनके देश का हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का कोई इरादा नहीं है। पता चला है कि ईरान ने आक्रामक दुश्मन की ताकत को तोड़ने और अहमकारी पावर्स की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाए जाने तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। भारत से आने वाली खबरों में, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस और उसके चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग की ओर से फ्रीज करने के फैसले पर रिएक्ट किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, हर बार एक ही पैटर्न, बीजेपी और चुनाव कमीशन मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं, फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है और जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं है। राहुल गांधी का बयान। एप्पल के 18 प्रो सीरीज के फोन खरीदने के लिए भाई भारत के स्टोरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। कमाल है, भारत में आज से एप्पल के आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की आधिकारिक बिक्री शुरू हो गई है और इस फोन को खरीदने के लिए दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में रात से ही कस्टमर्स मोबाइल स्टोरों के बाहर जमा होने लग गए थे। लाइनें लगी हैं और प्राइस पता है कितनी है? आईफोन 18 प्रो के 256 GB मॉडल की कीमत 1,65,000 है, जबकि 512 GB का मॉडल 1,89,000 रुपये है, जबकि 1 TB क्षमता के मॉडल की कीमत 2,39,000 रुपये और 2 TB क्षमता वाले मॉडल की प्राइस 3,14,900 रुपीस, 314,900 रुपीस, और इसके लिए लाइन लगी है खरीदने के लिए। कौन कहता है कि भारत देश जो है वो गरीब है। अमेरिका ने ईरानी दल को न्यूयॉर्क आने की दी इजाजत। टीम में पेजेश्कियान और अराग्ची शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने ईरान के अधिकारियों को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली यूएन की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए वीजा दे दिया है। दोनों देशों के बीच युद्ध अब 7वें महीने में एंटर कर रहा है। और भाई क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर, कल बड़ा तूफान मचा दिया क्रिकेट ग्राउंड में अभिषेक शर्मा ने। अफगानिस्तान इस तूफान को झेल नहीं पाया। भारत ने सीरीज के लिए क्लीन स्वीप की। भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे T20 मुकाबले में 127 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। भाई T20 20 ओवर्स का मैच और उसमें 127 रन से जीत। कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करके भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 30 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी और 34 गेंदों पर 108 रन बना करके वो आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 11 छक्के और 9 चौके लगाए। लोग कहते हैं कि भाई एक शर्मा जाता है तो दूसरा आ जाता है वैसा ही धुआंधार बन के। रोहित शर्मा तो उनके जाने की तैयारी है तो अभिषेक शर्मा उनकी जगह लेने जा रहे हैं लगता है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है जीरो।

0: जिंदगी वहाँ सेटल माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: हमारी रक्षक है वो।
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
2: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: ये है लाइका गो।

0: रात की छोड़िए दिन की बात करें भाई, समाचारों में एनडी परनम के इस वादे के बावजूद कि वो राजनीति में बदलाव लाने जा रहे हैं, पता चला है कि वो पिछली सरकार की बहुत सारी पॉलिसियां फॉलो कर रहे हैं।
1: Across Greater London, this is Like a Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में विद चिंतन। माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, ये प्रोग्राम लेकर मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं। समय हो गया है 11:05। और ये समय है चिंतन का, विचार करने का। और आज चिंतन में हम जो विचार शामिल कर रहे हैं वो बड़ा कॉमन है। लोग बहुत बातें करते हैं प्यार की, मोहब्बत की, हमारे सारे गीतों में, सारी फिल्मों में, शायरी में, डायरी में बस यही एक शब्द बहुत बार दोहराया जाता है। लेकिन प्यार का मतलब किसी की समझ में आता है? प्यार समर्पण होता है, ये कौन कहता है? भाई आइए आज के दिन की ओर ध्यान दिलाते हैं। आज का चिंतन हमें तरुण भाई ने भिजवाया है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर राउंसलो के सेवक हैं तरुण, और वो लिखते हैं कि रवि भाई आज राधा अष्टमी है। हाँ बहनों भाइयों, बता दें आपको, लंदन में आज 18 सितंबर को सप्तमी सुबह 8:30 बजे तक थी और उसके बाद से अष्टमी शुरू हो चुकी है और राधा अष्टमी का पर्व आज है। पंचांग में आज ही लिखी है लंदन में अष्टमी। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो आज तिथि है, ये श्री राधा जी के प्रागट्य दिवस के रूप में ये दिन श्रद्धा से मनाया जाता है। 2026 में मुख्य राधा अष्टमी हालांकि कल तक चलेगी पर आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये राधा कौन है? श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, श्री कृष्ण तो बचपन में ही राधा से अलग हो गए थे, लेकिन गोपियों ने उस ईश्वरीय स्वरूप को पहचान लिया था। राधा ने कृष्ण में छुपे उस विष्णु अवतार भगवान श्याम सुंदर 16 कला संपूर्ण प्रभु को अपना मान लिया था। राधा को कृष्ण भक्ति में प्रेम भक्ति और समर्पण का सिंबल माना जाता है। राधा अष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं है बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम पूर्ण रिश्ते को स्मरण करने का एक अवसर है, एक पावन त्योहार। आपको बता दें श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान कहते थे कि अगर मैं किसी के सामने कमजोर हूं, किसी से मैं हार स्वीकार करता हूं तो वो राधा है। करोड़ों वज्र पर्वतों को उखाड़ सकता हूं, हाथियों को पछाड़ सकता हूं, कोटि वज्र तोड़ देऊं, धनुष मरोड़ डारूं, पत्थर निचोड़ नित करूं ऐसे खेल, खेल ही में खंबा फाड़ धरूं पीठ पे पहाड़, गज दिग्गज पछाड़ डारूं काल के नकेल, पर केली मेल मुझ मोहे न चाय दे, तनिक छाछ पे छोरी, ये ब्रिज की छोरियां मुझे नचाती हैं, मेरे हाथ बांध करके कहती है नाचो और मैं नाचता हूं। ये प्रेम की ताकत है, प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है बहनों भाइयों, नफरत उसके सामने बहुत कमजोर होती है। आज राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और राधा का गुणगान किया जा रहा है। अब देखिए प्रेम की ताकत, राधा भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेम का मतलब पाना नहीं है। राधा को श्याम कभी नहीं मिले, मीरा को कृष्ण नहीं मिले, लेकिन उनका नाम श्री कृष्ण के साथ आता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम त्याग है, प्रेम में विश्वास है, प्रेम में समर्पण है। भक्ति परंपरा में कृष्ण से पहले जो नाम आता है वो राधा का है। कृष्ण को पाने की साधना भक्ति है, कृष्ण की शक्ति है राधा। शक्तिमान है भगवान क्योंकि उनके साथ शक्ति है, इसलिए शक्ति का नाम पहले आता है।
आप किसी भी देवता का नाम पहले नहीं लेंगे, उसकी शक्ति का नाम लेंगे। राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, भगवती का नाम पहले, वो ताकत है। जब श्री कृष्ण बचपन में ही किशोर अवस्था में जब वो गोकुल को छोड़कर मथुरा जाने लगे तो गोपियां बहुत व्याकुल हो उठी। राधा भी अपने प्रियतम से बिछड़कर खुश तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने श्याम को रोका नहीं। मैं रोकूंगी नहीं श्याम, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ, जिस काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है वो करके दिखाओ। प्रेम बांधता नहीं है। राधा ने श्री कृष्ण को बंधन में नहीं बांधा, मुक्त कर दिया। अब देखिए तरुण भाई जो इशारा कर रहे हैं, हमारे लाइका हेडक्वार्टर पर श्री श्री रविशंकर आए और वो एक बात कह के गए जो मेरे दिल में आज भी सुरक्षित है, बार बार दोहराता हूं। उन्होंने प्रेम का स्वरूप बताया। वो कहने लगे, प्यार तो अधूरा ही होता है, जो पूरा हो गया वो प्यार कहां रहा? ध्यान से सुन लीजिए, जो अधूरा होता है, राधा का प्यार अधूरा है, मीरा का प्रेम अधूरा है, इसीलिए आज भी कायम है। भाई जो चीज अधूरी होगी उसमें प्यास होगी, चाहत होगी, एक निरंतरता होगी, वो बना रहेगा, पर जो पूरा हो गया वो तो खत्म हो गया। ये कहने में भी आता ना कि फला आदमी पूरा हो गया, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो पूरा हुआ माना जाता है। प्यार पूरा नहीं होता, ये निरंतर एक लगातार प्रोसेस है, इसलिए प्यार तो अधूरा ही होता है। प्यार बंधन में नहीं बांधता, मुक्त कर देता है। कभी ब्रिज जाएंगे? ब्रिज में ही क्यों, आपकी यहां मंदिरों में भी जाएंगे तो आप हैरान होंगे जानकर के कि आपको जय श्री कृष्णा कहने वाले कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा, वहां तो राधे राधे चलता है।

0: राधे राधे हमें शाम से मिला दे, यानी प्रेम है
1: तो राधे राधे बोलोगे,
0: समर्पण है
1: तो राधे राधे
0: वही भक्ति है,
1: रुक न पाओगे
0: वही प्यार है, त्याग है
1: रुक न पाओगे खुद को तुम काढ़ा के ही हो,
0: कुछ पाने की इच्छा नहीं
1: राधे राधे,
0: कुछ देना ही प्यार है
1: राधे राधे,
0: उसका नाम है राधा,
1: हमें शाम से
0: राधा ही शाम से मिला सकती है।

0: प्यार तो अधूरा ही होता है, मतलब जो निरंतर होता है, जो समाप्त नहीं होता, जो पूरा नहीं होता, जो चलता ही रहता है। दिल बनकर धड़कता है, आंसू बनकर आंखों से बहता है, इंतजार बनकर राह देखता है। प्रेम तो वही है। आज का चिंतन, आज का विचार राधाष्टमी के पावन अवसर पर भाई, आज का चिंतन जिसके लिए प्रेरणा हमने ली श्री श्री रविशंकर जी से, और आलेख था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर हांसलो से तरुण भाई का। और बहन भाइयों, चिंतन के साथ जुड़ा गीत भजन, वृंदावन का बड़ा मस्ती भरा भजन जो आजकल भजन जैमिंग में बहुत गूंजता है। और फिर याद दिला दूं कि कभी आप ब्रिज में जाएंगे ना, तो वहां जय श्री कृष्णा कहने की बजाय लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं राधे राधे कह के। यहां भी मैंने बहुत जगह देखा है, क्योंकि राधा और श्याम प्रेम स्वरूप में एक हो गए हैं। राधा का नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राधाष्टमी की अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए समेटते हैं चिंतन को, याद दिलाते हैं कि भाई चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज एक पाउंड के बदले कितने भारतीय रुपए दे रहे हैं, नोट कीजिए। If you want to send money to India, this is the right time because the rate is good. For one pound, State Bank of India UK are giving 127.8 rupees. 127 rupees or 80 paise. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.

0: Set Kofood Containers Total Satisfaction.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me or you.
0: Southall Travel, auto protected.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु,
5: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
3: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
7: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: हैरो, इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान. साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
10: दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
11: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
11: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरीना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
12: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
11: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
13: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
14: We're finally going home for the wedding.
15: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
14: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
15: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
14: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
15: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
14: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
16: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
17: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
18: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
19: On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja talks about modern harassment.
20: A lot of the time, women, they can be unnecessarily harassed, hassled, in a very nasty way.
21: Subtle way.
20: You know it's happening. They know it's happening. When are we going to actually speak up and say,
21: now,
20: hang on, uncle, that wasn't right. Mummy, do something.
21: Now is the time to do it,
20: right,
21: actually.
20: How?
19: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits, back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
22: Hum se sasta, kahin nahi mil sakta.
23: TravelHub.
22: At all protected.
19: Leica.
24: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हेलो भाइयों, एक सूचना है आप सबके लिए। भाई ये बड़ी काम की बात है, ख़ासकर जो वैन चलाती हैं, जो वैन का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में, उनके लिए संदेश है मर्सिडीज़ बेंज वैन्स की ओर से और लाइका रेडियो नेटवर्क के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है एक ऐसी जानकारी जो शायद आपको थोड़ा चौंका सकती है। यूके में गाड़ी ख़राब होने की वजह से बिजनेस को हर वैन पर औसतन हर रोज 1172 पाउंड का नुकसान होता है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैन्स लेकर आए हैं अप टाइम प्रॉमिस, रोड साइड असिस्टेंस और सर्विस के लिए अधिक समय से लेकर वाहन की रियल टाइम जांच और खराबियों की तुरंत पहचान और भी बहुत कुछ उनके पास आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए कई फायदे हैं। तो मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ हैं, आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानकारी हासिल करें। एक और संदेश है भाई हमारे पास, और ये संदेश है क्रिकेट के बारे में। हालांकि ये T20 सीरीज तो ख़त्म हो गई है, पर ये और भी आगे भाई क्रिकेट के बारे में सूचना दे रहे हैं। कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान जो सीरीज चल रही है ऑन जियो हॉटस्टार। 3 वन डे इंटरनेशनल्स फ्रॉम 13th of September अंटिल द थर्सडे ऑन 17th of September फ्रॉम 2:50 PM। ये तो सीरीज भाई हो चुकी है। भारत ने अफगानिस्तान को तीनों मैचेस में हरा दिया और तीसरे में तो कमाल कर दिया भाई, अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर शतक बनाकर। और डाउनलोड एंड सब्सक्राइब द जियो हॉटस्टार अपना ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
0: Leica Gold is 5. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

कोई कोई अपने पिया के करीब है। भाई आपकी तस्वीर देखकर तो ऐसा ही लगता है स्वीटी कालड़ा जी, आपने जो तस्वीर लगा रखी है संदेश में, कहती है कि बचपन याद आ गया, वो खेल, वो साथी, वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले, हम आज तलक भी ना भूले वो प्यार पुराना बचपन का। भाई ये उसी फिल्म का गीत जिसके बोल मैं सुनवा रहा था, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कहती हैं बचपन तो याद आएगा, गोल्ड माइन के ये हीरे हैं, मतलब सोने के कण हैं गीतों में। आपके नाम क्या स्वीटी जी, ये गीत हमने, देशराज बसंत साहब, क्या बात है। कहते हैं एक पहलवान बस में चढ़ा, कंडक्टर का भाई साहब टिकट, पहलवान बोला हम टिकट नहीं लेते। अब भाई उसके डोड़े देख करके, उसकी चौड़ी छाती, इतना बड़ी बड़ी मूछों वाला कंडक्टर बेचारा चुप रह गया देख के कि क्या फ़ायदा पंगा लेने से। अब पहलवान रोज़ बस में चढ़ता पर टिकट नहीं लेता।

0: क्यों नहीं लेते? पहलवान बोला, क्योंकि हमारे पास पास है महीने का। कर लो, क्या करोगे।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: भाई एक बात समझ में नहीं आती, तोता तोती की कहानी नहीं होती, तोता मैना की कहानी क्यों होती है? भाई मुश्किल हो जाता, तोता तोती की पहचान कैसे करें? आज काका हाथरसी का जन्मदिन है, हास्यरस। वो कहते हैं हाथरस नहीं, हमारे शहर का नाम हास्यरस था, काका हाथरसी कहते थे। किसी ने हमसे पूछा का बताइए श्रीमान, तोता तोती की भला कैसे हो पहचान? तो हमने कहा भाई असली पहचान तो दाना डालने से होती है, अगर वो दाना चुगता है तो तोता है, और दाना चुगती है तो तोती है।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में ये गीत हमें ले आया है 12 बजे की खबरों के नज़दीक। और भाई खबरों में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री तो बदला है पर कहते हैं पॉलिसीज तो नहीं बदली, कहते वही पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री कर रहे थे। अब टोरी पार्टी वाले ये कह के मजाक उड़ा रहे हैं कि ये जो एंडी बर्नम आए हैं ये तो कॉपी पेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूज इज नेक्स्ट, समाचारों के उस पर भी हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइका रेडियो नेटवर्क पर, ये लाइका गोल्ड।
1: अक्रॉस ग्रेटर लंदन, दिस इज लाइका गोल्ड, 10:35 AM, DAB एंड ऑनलाइन, अ पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: The top stories this hour. Leaked documents from Number 10 show some of Sir Keir Starmer's planned policies have already been adopted by Andy Burnham, and he could soon announce more of them. The files show how the Prime Minister's predecessor hoped to stay in power with his roadmap. The Tories are calling Mr. Burnham the copy and paste Prime Minister. Labour MP Jess Phillips has denied that and says it's no surprise that some policies feel similar.
3: It's the art of the obvious that things like, you know, trying to get rid of rogue shops. There isn't on high streets. There isn't a member of parliament in the country who wouldn't sit and moan to you all day about those sorts of things.
2: A man from Dumbarton

0: What a songer, what an actor he was, Shashi Kapoor, जिनका जन्म नाम तो था बलबीर राज कपूर। 18 मार्च 1938 में उनका जन्म हुआ था कोलकाता में, और भाई निधन हुआ मुंबई में, और निधन हुआ उनका 4 दिसंबर 2017 में 79 बरस की आयु में, महाराष्ट्र में मुंबई में भाई उनका निधन हुआ। शशि कपूर साहब से एक दो बार मुलाकात हुई, एक बार एक बीबीसी के कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी, बीबीसी हिंदी सेक्शन जब यहाँ बुश हाउस से प्रसारित होता था, और एक बार खुद मैंने उन्हें अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू किया। संजना कपूर को भी मैंने इंटरव्यू किया, संजना कपूर भाई पृथ्वी थिएटर देखती हैं आजकल, और भाई शशि साहब मेरा ख्याल है कपूर भाइयों में, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा हैंडसम, और दुबले पतले होते थे, हालांकि आखिर के दिनों में तो मोटापा उन्हें भी घेर चुका था, लेकिन शशि कपूर साहब बड़े दिलचस्प तबीयत के एक्टर थे। और भाई इस सप्ताह वो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे, उनकी फिल्मों के गीत गूंजे, आपने सुने और पसंद किए, तो थैंक यू वेरी मच शशि साहब, आप जहाँ भी हैं ईश्वर आपकी आत्मा को सदगति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

और भाई इससे पहले कि हमारे ये क्लाइंट्स रूट जाएं, बता दूं आपको उदित नारायण और आदित्य नारायण आ रहे हैं। 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे द 20th ऑफ दिसंबर। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: आता है।
1: और इन अदाओं पे गुस्सा आता है भाई, किसी किसी को कौन सी अदाओं पे? द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरीज ऑफिस हैज विड्रॉन एन अवार्ड प्रेजेंटेड टू अ मुस्लिम क्लेरिक हु प्रीवियसली प्लेस्ड टू बेस्ट एन ऑनरेरी टाइटल ऑन ओसामा बिन लादेन। अब देखिए, किसी को बुला करके आप सम्मानित कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, बाद में पता लगता है कि भाई वो तो ओसामा बिन लादेन का प्रशंसक है और उनकी तारीफ करता है। अब आतंक को भाई क्या कहते हैं कि ऑनर देने वाले या उसकी प्रशंसा करने वाले इस अवार्ड के अधिकारी नहीं है। हाफिज मोहम्मद ताहिर मोहम्मद अशरफ ही वॉज गिवन द हर्बर्ट वाल्टर अवार्ड फॉर रिकॉन्सिलिएशन एंड इंटरफेथ ऑपरेशन। लेकिन बाद में जब पता लगा कि भाई उनका स्वभाव ऐसा, वो ऐसी नेचर के और ऐसा सोचते हैं, तो साहब उनसे अवार्ड वापस ले लिया गया।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: ye hai Laika Gold.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

आजकल अंधेरा बहुत देर से होता है, शाम देर से ढलती है। नहीं नहीं नहीं, आजकल तो थोड़ा जल्दी ढलने लगी है, क्योंकि भाई छुप छुप कर मिलने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ता था गर्मियों में। अब सर्दियां शुरू हो रही हैं तो सूरज जल्दी ढलने लगा है, प्यार करने वालों का कारोबार चलने लगा है।

0: गुरुदेव गांजा, थैंक यू वेरी मच, आपका संदेश मिल गया है। और भाई हमें बैसन साहब याद दिला रहे हैं कि आज असित सेन साहब की पुण्यतिथि है। साउथ ऑल ट्रेवल का पैगाम आ गया है, नोट कर लीजिए। याद दिला रहे हैं कि भाई दे आर नोन फॉर दुबई डील्स, दुबई जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अभी फोन कीजिए साउथ ऑल ट्रेवल को ऑन 0208-574-8410। दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड। साउथ ऑल ट्रेवल।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: Like a gold. और भाई मैं कह रहा था कि आज असित सेन साहब की पुण्यतिथि है। असित सेन भाई कुछ कैरेक्टर फिल्मों में ऐसे रहे हैं जो मतलब मेन रोल में तो नहीं आए, लेकिन जब वो छोटे मोटे रोल्स में भी आए तो छा गए, उनकी एक छवि, उनकी इमेज अपनी जो बन गई। अब ऐसे ही कष्ट मुखर्जी साहब होते थे, तेरे को इसने इस तरह से बोलते थे भाई, दारू पी करके जो रोल वो करते थे, बिना पिए दारू पीने वाले का रोल। असित सेन साहब भी पुलिस वालों के रोल में आते, निक्कर बहने और भाई हाथ में डंडा लेके सैल्यूट कौन मारेगा पुलिस वाले से पूछते थे अपने जो है नीचे के अधिकारियों से। असित सेन साहब कॉमेडियन का रोल तो करते ही थे, कैरेक्टर रोल्स भी करते थे। तो असित सेन एक और भी थे जो फिल्मों में निर्देशन करते थे, लेकिन ये अभिनेता असित सेन, एक्टर कॉमेडियन, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी, उन्हें भी हम याद कर रहे हैं। और हमें भाई अपने निर्मला जी का संदेश मिला, कहती हमने आपको देखा और आपसे मिले भी थे, ज़रूर मिले होंगे जी, थैंक यू वेरी मच, अगली बार याद दिला दीजिएगा। नहीं मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, बहुत सारे लोग मिलते हैं लेकिन मैं इतना भुलक्कड़ हूँ कि बाद में भूल जाता हूँ, पर आपने भाई मुलाकात की याद रखा, थैंक यू वेरी मच। और कौन है जिनके मैसेजेस सामने हैं? अरुण हैं, अमीन मोहम्मद साहब हैं, कहते हैं क्रिकेट में आपका एक शर्मा जाता है दूसरा आ जाता है, हैं मतलब वो इशारा कर रहे हैं रोहित शर्मा, अभी गए नहीं है, अगले मैच में खेल रहे हैं, कोहली भी खेल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि रोहित शर्मा अब रिटायरमेंट लेंगे तो अभिषेक शर्मा उनकी जगह ले लेंगे, और अभी तो भाई और भी बहुत सारे शर्मा बाकी हैं। भरत गंगाराम जी थैंक यू, अर्जुन जी, हंसा जी, सुनीता शर्मा जी, और कहते दे आर मैनी मैनी रीजंस वाई कृष्णा लव्ड राधा, चिंतन की ओर इशारा करते हैं बहुत सारे हमारे श्रोता। और हमारे विजय साहब क्या कहते हैं, आज चिंतन में प्यार का, प्रेम का चर्चा था, कहते हम प्यार की बातें करते हैं, करना आता प्यार नहीं, ये मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का यार नहीं। बात तो सही है भाई, वो जो असली प्रेम होता है ना, वो पाने की इच्छा में नहीं होता, कुछ देने की इच्छा, समर्पण, तो वही आज चिंतन में हमने जो है प्रतिष्ठित किया कि प्यार मांगना नहीं, प्यार चाहना नहीं, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे। भक्त कहता भगवान से, श्री कृष्ण से, राधा कहती है श्री राम से, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, क्योंकि तुमने अगर मुझे कुछ दिया तो, वरना एक प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, इश्क एक तरफ से ही मसरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होंगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं, मैं अगर रोऊं तो रोऊं, तुम अश्रु बिंदु न ढालना, बिंदु कवि है जिन्होंने ये गीत लिखा, क्यों नहीं ढालना भाई आंसू, क्यों नहीं गिराना, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। आंसू अश्रु बिंदु, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, वरना दुनिया में तुम्हारी मशहूर हो जाऊंगा मैं, क्या बात है, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना एक प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं।
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Visit travelhubworld.com.
3: 100% pure ghee made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: हमारी रक्षक है वो।
7: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
7: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
9: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
5: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
10: Use your brain now. Play the game.
11: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
12: Have you noticed the way fans shout at football matches?
13: Oh, wake up!
12: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
14: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
15: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
14: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
15: A spectacular musical experience is coming to Ova Arena, Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
16: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Avi Sharma Show on Like a Gold. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
2: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, Zee TV, an exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
0: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
4: नमस्कार. मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટસીઇંગ, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. વિઝિટ maharajatours.co.uk ઓર કોલ 07956154846.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-287-509.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
11: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
12: I left behind everything I knew.
11: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.

जो वीकेंड नजदीक है आपके लिए एक सुहाने और बड़े खूबसूरत वीकेंड की कामना करते हुए आपका ये दोस्त रवि शर्मा अब आपसे इजाजत चाहेगा। राधाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और भाई ये दुआएं कि हमारा आपका संबंध भी उस प्यार की तरह अमर रहे जो राधा और कृष्ण के बीच है, कि जो मिलते नहीं हैं लेकिन साथ चलते हैं।

0: Oh my god, oh my god. उफ, मजा आ रहा था, लेकिन सॉरी, रंग में भंग डाल रहा हूं मैं. शबाना आजमी, शी इज 76 years young today. Let us all wish her a long, happy, healthy life. अभी आजमी सरनेम इनका. So let's see all the आजमीज in the family. इनके पिताजी कैफी आजमी, इनकी माताजी शौकत आजमी. कैफी आजमी अ ग्रेट पोएट एंड अ राइटर लिरिसिस्ट इन आवर फिल्म इंडस्ट्री. अ वेरी वेल नोन पर्सन हु हैज रिटन सो मैनी ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. पोएट्री में देखो, फिल्मी गाने देखो, या इनकी किताबें देखो. जगजीत सिंह जी के लिए भी, अभी आपने सुना जगजीत सिंह जी का गीत फिल्म अर्थ से. सो अ वंडरफुली टैलेंटेड पर्सनालिटी कैफी आजमी, हु हैड रिटन सॉन्ग्स फॉर द फिल्म अर्थ एंड मैनी अदर सॉन्ग्स. अब कंटिन्यूइंग विद ऑल द आजमीज, कैफी आजमी फादर, मदर शौकत आजमी, अ स्टेज एक्टर. यस, इसलिए तो खून में इतना सा एक्टिंग है. और शी यूज टू एकम्पनी हर फादर इन टू मुशायराज, एंड घर में चहल पहल रहती थी, लोग आते जाते रहते थे, ऑल सेलिब्रिटीज, और बैठ के मुशायरे होते थे. और बचपन से इन्होंने यही सीखा और अपनाया. उनके भाई बाबा आजमी अ सिनेमेटोग्राफर. शी हैज won 5 national awards, 5 filmfare awards, a padma shri, padma bhushan, so many international awards. ab iske aage kisi ki pehchan kya ho sakti hai? agar national awards dekho to 1975 mein ek film thi ankur, that was her first one of ankur film was the debut film of satyajit ray ki film thi. isme कितनी एक्ट्रेसेस को ये ऑफर किया गया था, वहीदा रहमान जी को ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन शी जस्ट रिफ्यूज्ड इट, यू नो. अब ये रोल बड़ा चैलेंजिंग था, इन्होंने निभाया, एंड वंस शी फिनिश्ड विद द रोल शी गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर इट. सो वहां से ही पहचान बन गई, एंड शी बिकेम द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ पैरेलल सिनेमा. अगर आप पूछे पैरेलल सिनेमा क्या होता है, उस जमाने में देर वॉज अ न्यू वेव मूवमेंट नोन फॉर सीरियस कंटेंट एंड रियलिज्म वाली फिल्में. सो दैट वॉज नोन एज पैरेलल सिनेमा, एंड शी ऑल्सो डिड कमर्शियल एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा लाइक यू नो ऑलरेडी, जैसे मासूम फिल्म थी, थोड़ी सी बेवफाई. दूसरी फिल्में अगर याद करूं, फकीरा, टूटे खिलौने, अवतार, यस व्हाट अ फिल्म, लहू के दो रंग, स्वामी, अर्थ, ये सब फिल्में उन्होंने रोल निभाए. शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट. सोशल एक्टिविस्ट माने शी बिलीव्स इन वुमेन्स राइट्स, एंड शी इज अ वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट अमंगस्ट मैनी अदर एक्टिविस्टिक सब्जेक्ट्स. हैदराबाद में जन्मी हुई, विच इज नाउ इन तेलंगाना. शी वॉज एमपी ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा क्या होता है? ओके, वो भी बता देता हूँ. राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया. वहां पे 27th August 1997 से लेकर 6 साल टिल 26th August 2003 शी वॉज एमपी ऑफ राज्यसभा, एंड शी वॉज सक्सीडेड बाय हेमा मालिनी. अब इनकी फिल्मों के बारे में अगर मैं कहूँ तो शुरुआत इनकी हुई FTII पुणे. FTII, ओके, वो भी मैं बता देता हूँ, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे. वहाँ पे इन्होंने जब शुरुआत की तो बहुत सारे जाने माने नाम थे जो इनके बैच में थे. वो बैच था, एक्टिंग का क्लास था इन FTII पुणे. 1971 से 1973 का बैच था, उसमें उनके क्लासमेट्स थे रीटा भादुरी, देन जरीना वहाब, कमलजीत सिंह, शैलेंद्र सिंह अपने सिंगर, हाँ उन्होंने भी एक्टिंग का कोर्स किया वहाँ पे, ही वॉज इन द सेम बैच. सो देर आर सो मेनी अदर नेम्स, लेकिन आई डोंट नो द अदर्स, लाइक नीलम मेहरा एंड आदिल अमान एंड मोहन शर्मा, आई डोंट नो दोज पीपल. सो आगे बढ़ता हूँ मैं, हम आज उनको विश करते हैं हैप्पी 76th बर्थडे टू शबाना आजमी जी. एंड इनकी रोमांटिक लाइफ देखी जाए तो शी वॉज एक्चुअली एंगेज टू बेंजामिन गिलानी इन द लेट 1970s. देन शी वॉज इन टू अ रिलेशनशिप फॉर 7 years विद शेखर कपूर. एंड देन 9th December 1984 को व्हेन शी वॉज 34 years ओल्ड शी मैरिड जावेद अख्तर. जावेद अख्तर की सेकेंड मैरिज शबाना आजमी से, क्योंकि फर्स्ट मैरिज जावेद अख्तर की थी हनी ईरानी के साथ, उनके दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर. उस टाइम पे बड़ा बवाल मच गया था, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम बीइंग इन्वॉल्व विद शबाना आजमी इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड टू हनी ईरानी. उनके डैडी ने जाके शबाना से बात की और कहा कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ. कैफी आजमी जी ने जब पूछा उनकी बेटी को तो बेटी ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी एंड माय एक्सपीरियंस आई लव द मैन, बट इनका मैरिज सर्टिफाइड होगा, ऑन पेपर होगा, लेकिन द मैरिज हैज बीन ओवर फॉर क्वाइट अ व्हाइल. सो ही गेव हर हिज ब्लेसिंग्स एंड सॉर्ट ऑफ सेड आई गेस आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जब डिवोर्स हुआ और शादी हुई शबाना आजमी से जावेद अख्तर की, आज की तारीख में 9th ऑफ डिसम्बर 2026 को आपने एक फिल्म देखी होगी 1942 अ लव स्टोरी, तो इनकी कहानी बनेगी 42 इयर्स ऑफ मैरिज, 42 इयर्स की लव स्टोरी इनकी, क्योंकि 42 इयर्स हुए इनकी शादी की. So let's wish her happy birthday and in advance, happy 42nd anniversary. Gaane sunte hain.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T&Cs apply.
2: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
4: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
5: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
6: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
5: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties.
13: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
14: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
15: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
16: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
17: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
16: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
18: द साइकिल ऑफ लव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनास कम्स इन एपिक ट्रू लाइफ एडवेंचर।
19: I left behind everything I knew.
18: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
19: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
18: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
20: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
21: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
22: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: तू है वही दिल ने जिससे अपना कहा. दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड किशोर दा फ्रॉम द मूवी ये वादा रहा, जिसमें थे ऋषि कपूर एंड पूनम डिल्लो. एंड टेल मी हु वाज अ थर्ड एक्ट्रेस, मैसेज मी, मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा. एंड प्यारे वाले गाने विल कंटिन्यू ऑन गोल्ड ड्राइव.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
3: TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
6: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
5: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
6: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
7: हमारी रक्षक है वो.
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
8: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
10: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ. डैनी प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन.
11: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place.
11: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
13: Danube 11-11. Danube Properties. Danube 11-11.
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
16: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
17: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
16: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
18: My friend, dimaag ke circuit mein jab bhi spark hui hai, Stone Age se lekar New Age tak tarakki hui hai.
19: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
2: Use your brain now. Play the game.
19: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा, दिस सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अनामिका. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.

0: गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम दस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी रामपुर का लक्ष्मण.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स परफेक्ट फॉर माय बिजी डे अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर.
2: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: One day to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
4: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja talks about modern harassment.
5: A lot of the time, women, they can be unnecessarily harassed, hassled, not in a very nice way.
6: Subtle
5: way. You know it's happening. They know it's happening. When are we going to actually speak up and say,
6: now,
5: hang on, uncle, that wasn't right, mummy, do something.
6: Now is the time to do it,
5: right,
6: actually.
5: How?
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.

0: हाय, इस प्यारे वाले गाने के बाद एक और गाना दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

0: खतुबा खतुबा, यस दिस इज एक्चुअली अ फुल वॉल्यूम सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले फ्रॉम द मूवी अली बाबा चालीस चोर. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है अबाउट दिस सॉन्ग. सो ऑफ कोर्स दिस म्यूजिक वॉज कोरियोग्राफ वॉज कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन. एंड आर डी बर्मन ने जब ये सॉन्ग आशा भोसले को ऑफर किया, सो शी वॉज लाइक, आप ऐसे वाले गाने सारे मुझे ही क्यों देते हो, यू नो लाइक दिस खतूबा एंड मोनिका ओ माई डार्लिंग. सो आर डी बर्मन सेड कि अगर कोई इस गाने को अच्छी तरह से निभा सकता है देन इट्स ओनली यू. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री कि उन्होंने ये गाना इतना ब्यूटिफुली गाया है. यस प्रज्ञा जी, दिस इज एक्चुअली अ फुल वॉल्यूम सॉन्ग एंड आई एम श्योर कि आपने ये गाना इंजॉय किया. थैंक यू सो मच फॉर योर प्यारे प्यारे मैसेजेस. आई एम वीर इन फॉर द लवली सैंडीशा ऑन गोल्ड ड्राइव ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: ये या वो.
0: Alright, so our artist of the week is Shashi Kapoor. And इतने सारे गाने थे उनके, तो मैंने सोचा कि यू नो कोई दो जो मेरे फेवरेट गाने हैं वो चूज करूँ. नाउ योर चॉइसेस, शुड आई प्ले कह दूँ तुम्हें फ्रॉम द मूवी दीवार और शुड आई प्ले दिन है बहार के फ्रॉम द मूवी वक्त. लेट मी नो विच वन ऑफ शशि कपूर यू नो इन दोनों गानों में से आपको कौन सा गाना सुनना है एंड आई विल प्ले द सॉन्ग जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले.
2: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai like a gold.
4: Like a gold.
2: Like a gold. Traffic and travel.
5: This is Martin with your travel. Delays on the M4 this evening onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. Slowing on the A312 the partway southbound before the M4 Junction 3. Continues to queue on the A312 Church Road and Mandeville Road from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. The A406 North Circular Road slowing both ways as you head in towards the Hanger Lane territory and the A40 Western Avenue heavy westbound before Gypsy Corner. To the Tube and severe delays on the central line between Epping and West Ruislip and between Epping and Ealing Broadway, between Hainault and Ealing Broadway, and between Hainault and West Ruislip due to cancellations. And that's your latest traffic and travel.
6: Tonight's Euro Millions jackpot is £24 million.
7: It's so exciting, I could do the splits.
8: What? Oh, should have stretched first.
6: Get in tonight's draw, Euro Millions from the National Lottery. It could be you. Estimated jackpot. Rules apply. 18 plus.
4: Ye hai
3: Laika Gold.
9: Ye rishta kya kehlata hai.
10: This part of the show is brought to you by Ye rishta kya kehlata hai. Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
11: Harrow, famous Spice Village, is now open in Harrow. Sizzling mixed grills, signature masala fish, rich, delicious karais and fresh naan straight from the tandoor. And with one of the biggest vegetarian menus prepared in a separate vegetarian kitchen. So bring your family, bring your friends and taste the award-winning flavour of Spice Village. Find us at 1-4 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village, Harrow. Now open. Your new place to eat, meet and celebrate.
12: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है.
14: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
15: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। That's 8574-8410.
17: Safo Travel, auto protected.
18: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. વિઝિટ maharajatours.co.uk ઓર કોલ 07956154846.
19: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइसलिप, HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-87509.
20: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
21: विंटर्स कमिंग एंड मेरा बॉयलर pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
22: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
23: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialist. Call 020-8767-2142.
24: Carotino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
25: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
26: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
27: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: हाय रे हाय तेरा घुंघटा इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड किशोर दा। ये एक और गाना इस आवर और वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय, बट रिमेम्बर हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। एंड अनीसा जी स्टूडियो में आ चुकी है। अब जब अनीसा जी स्टूडियो में आई हैं तो मेरा अंदाज भी थोड़ा शायराना है। अनीसा जी आपके लिए एक शायरी।
1: क्या बात है, क्या
0: बातों से आपकी एक जादू सा चलता है।
1: अच्छा,
0: आप जब कर बोलो तो समा बदलता है।
1: ओए होए होए,
0: क्या बात तो है ना। चलिए एक और गाना एंड इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय।
2: Like a Radio 90s, Like a Radio Punjabi, Like a Gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lazim hai is hayat mein aisa koi bashar. Zaruri hai zindagi mein aisa koi insaan. Lazim hai is hayat mein aisa koi bashar. Dil jisko dekh dekh dhadakta rahe sada. है कोई आपकी जिंदगी में ऐसा सीक्रेट्स? चलें बता दें. राइट, तो बता तो वैसे बहुत सारे लोग रहे हैं. सही जवाब क्या है मैं बताती हूँ कि किस किस का सही है. सही जवाब तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आवर आपको पता चलेगा. तो मैं आपको बता दूं कि आज एट लास्ट मनु जी आपकी जीत हुई. आपको मुबारक हो, आप राजा बन गए हैं. सबसे पहले आप ही ने सही जवाब दिया. मिसेज चियांग वेल डन. फवाद जी, रुखसाना जी, ओम प्रकाश लाल जी, मीनाक्षी जी, सपना जी, अली जी अटलांटा से, संध्या भावसिर जी, उल्लास जी, दीनी जी, उमर जी दुबई से, फरजाना जी, सलमा जी, अंसर जी, दिनेश पोपट जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है. अमित पटेल और इरफान जी आप थोड़ा चूक गए.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
4: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 PM on Leica Gold. Make it a date.
2: हमारे आपके सबके वीर ने यानी राजवीर ने सैंडी जी की जगह साथ निभाया आपका.

0: मुश्किल। वन एंड ओनली रफी जी फिल्म भाई भाई के लिए गा रहे थे, 1970 की फिल्म। मेरी तकमील में शामिल हैं कुछ तेरे हिस्से, मेरी तकमील में शामिल हैं कुछ तेरे हिस्से, हम अगर तुझसे ना मिलते तो अधूरे रहते। मिसेज शुक्ला, सो सो सो वेरी स्वीट ऑफ यू, इतने प्यारे से मैसेज के लिए मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। इसी तरह से साथ निभाती रहिए और कभी कभी अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाती रहिए। लीजिए भाई, आज की थीम को बूझने वालों में बॉबी जी भी शामिल हैं, गीता हर्षद जोशी जी भी, अंजुम जी भी, तस्मिया जी भी और जिशान जी भी। जिशान जी कहाँ थे आप? मैंने तो कहा शायद कुछ नाराजगी चल रही है मुझसे, आज आपको पता चला कि आई एम बैक। बेहद शुक्रिया अपने प्यारे से मैसेज के लिए और सही जवाब के लिए। राइट, और ये क्यों कह रहे हैं सब देखना देखा? रानी जी स्लाव से आपका जवाब गलत है। निलेश जी नहीं, अमित पटेल जी और इरफान जी ने गलत जवाब दिया, तो मैंने कहा लो यकना शुद्ध दो शुद्ध, अब ये दो तो नहीं, ये तो चार शुद्ध हो गए, तो आपके जवाब गलत हैं, लेकिन आपने कोशिश की है, आई रियली अप्रिशिएट दैट।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakte 128.4 Indian rupees, 86.8 Afghan Afghani, 371.3 Pakistani rupees, 164.4 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LEICA Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The LEICA Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.70 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और हमारी रेगुलर लिसनर कंट्रीब्यूटर आप हैं मंजीत संगर जी, आपका भी अभी अभी मुझ तक जवाब पहुंचा और वो भी सही वाला। अब रानी जी मुझसे सवाल कर रही हैं, पहले गलत जवाब दिया, अब मुझसे पूछ रही हैं इज दैट, यस रानी जी, यस यस यस, लेकिन आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपका तो नाम ही रानी है, आप रानी ना बनो प्रजा ना बनो, रानी तो रानी होती है। रानी जी बेहद शुक्रिया कोशिश करने के लिए, अब आप सही बोल रहे हो लेकिन इट्स टू लेट, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत।
1: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।
0: उदित नारायण जी अपने बेटे के साथ आ रहे हैं लाइव परफॉर्म करने के लिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो इस वक्त बड़े मियाँ का साथ दे रही हैं अलका याग्निक जी। फिल्म सुहाग 1994 की फिल्म, और मैंने शायद ही कभी ये गाना प्ले किया हो, आज क्या हो गया मुझे।

0: मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दिल रुबाई से भरे हुए गीत आपको पसंद आए होंगे। अब मजीद चंद नाम शामिल किए लेते हैं। गुल जी कह रही हैं, आज से मेरा भी नाम गुलरानी। आज से क्या, आप हमेशा से गुलरानी? आपका जवाब भी बिल्कुल सही है ताहिर जी, सही कहा आपने। आजकल सीरत से ज़्यादा सूरत को तरजीह दी जाती है। भारती जी, तोची जी और सरोज जोशी जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहती हैं आई मीन, जो भी मीन आप तो मुझे बताना ही पड़ेगा, चेहरा, मुखड़ा, फेस, यही कॉमन रहा गीतों में। और शुरू में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए हुई कि मैं चाह रही थी कि सब लोग प्रॉपर सही जवाब दें, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ सूरत कहकर जो है वो जवाब दिया, तो मैंने कहा बात तो एक ही है, मुखड़े को जो भी कह के, चेहरे को जो भी कह के, फेस को जो भी कह के आप पुकारते हैं। चलिए उसमें से, अरे गुरसरन जी जी, रजनीश जी, गुड मॉर्निंग, उठ गए आप खैर से? चाय शाय पी ली, नाश्ता कर लिया? बाय द वे डिनर का टाइम हो रहा है। बेहद शुक्रिया, आपका जवाब सही है। और ये प्रोग्राम के पहले घंटे का आखिरी गीत हम आप ही के नाम करते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी बहुत सारे सिलसिले हैं, बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी शायरी, बहुत सारी गपशप है, तो मेरा साथ निभाइएगा, रेडियो से दूर मत जाइएगा। अनीसा नासिर वेरी मच हाजिर टिल, हां जी, 10 बजे तक।
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station.

0: और मैं इंतजार कर रही हूँ कि अभी आया अभी आया अभी आया उमर जी का मैसेज दुबई से लेफ्ट ओवर्स। मुझे खुद भी लग रहा है कि थीम चल रही है क्या अभी तक। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शह, जिसने डाली बुरी नजर डाली। हजारों दिल में छुपे हों हमारे खार मगर, हजारों दिल में छुपे हों हमारे खार मगर, चेहरे पर तो कम अज कम गुलाब रखते हैं। सवाल ये नहीं कि रखते हैं आप दो चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। लेकिन भाई हमारे सुनने वाले तो दिल भी अच्छा रखते हैं, मूड भी अच्छा रखते हैं, और साथ और सपोर्ट तो कहीं अच्छा रखते हैं। इसी तरह से साथ निभाइएगा और लीजिए प्रोग्राम के इस हिस्से में चंद अल्फाज में बताने जा रही हूँ कुछ ही देर में, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा और फिर मेरे को बताइएगा कि कौन से गीत की बात कर रही हूँ मैं।
1: This is like a gold, non-stop classics. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Lo ji, jaane anjaane Dinesh Popat ji ki farmaish puri hogi. Kehte main wait kar raha tha. Teri pyari badi surat ko zarur sunwana chahiye aapko. Dekh lijiye, maine aapko mayus nahi kiya. Sunwa diya, aap khush ho gaye, hum khush ho gaye. और अब मज़ीद लोग ज़रा कोशिश करेंगे और खुश खुद भी होंगे और मुझे भी करेंगे उल्टे पुल्टे को सीधा करके। गुजरे दिन खिजां के भेस, ये गुलशन याद। गुजरे दिन खिजां के भेस, गुलशन याद।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Right now at Tesco Mobile, get your most powerful upgrade yet with the iPhone 18 Pro, the ultimate pro iPhone with 250 gigs of data, all for just £61.49 a month with club card prices, saving you £72. Even better, you'll also get a £100 Tesco gift card. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £1,295.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See TescoMobile.com/terms.
1: Anisa Nasir, live across Greater London with The Big Show.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Cow's choice. 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
7: Cow's choice, pure ghee. Should this is why.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड।
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 020-8574-8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11, 11.
11: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
13: Danu 11, 11. Danu Properties. 11, 11. Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
15: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
16: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
17: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और इस गीत के बाद मिसेस के का मैसेज आना चाहिए था लेकिन नहीं आया. मैं अपने लिसनर्स की रग रग से वाकिफ हूँ और मुझे पता होता है कि इस गीत के जवाब में कौन कुछ क्या कहेगा, कोई कुछ कहेगा या कोई कुछ नहीं कहेगा. तो मिसेस के आपने तो मुझे मायूस कर दिया, आपने कुछ भी नहीं कहा. लेकिन हमेशा ही तरह मायूस नहीं बल्कि बहुत खुश करती है कमल शिवनानी जी ने. मेरा ख्याल है कि अल्फाज मेरे मुंह से पूरे निकलते भी नहीं हैं. इंद्रजीत ठाकुर भी यही, ठाकुर जी भी यही करते थे. अब वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनके औकात मतलब हमारी औकात क्या कहूँ मैं, बात तो उल्टी पुल्टी ना हो जाए निशा चुप कर. तो मेरा कहने का मतलब है कि उनके टाइम की जो काम की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है और वो हमें सुन नहीं पाते हैं और हम आपको बहुत मिस करते हैं इंद्रजीत ठाकुर जी. ठाकुर कभी दर्शन दीजिए ना. और लीजिए भाई, अब बता दूं कमल शिवनानी जी तो बन गए राजा, उसके बाद रानी हैं उल्लास जी, रिजवान शाह जी, मीनाक्षी जी, सलमा जी, एजाज जी, चश्म से. आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब भिजवाए हैं. पूरन कपूर जी हैम्बर्ग जर्मनी से मैसेज भिजवाने के लिए बेहद शुक्रिया. पूरे वीक की हाजिरी लग गई आपकी, गुज़श्ता भी और आइंदा भी. राइट, पूछ रहे हैं कि गजल स्टेशन कब शुरू होगा. अगर वो शुरू होगा तो आपका क्या बनेगा? अरे मेरा क्या बनना है, मेरा जो बनना था बन चुका है. बहुत जल्द शुरू होगा और आप ही की तरह बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर. लीजिए एक बहुत ही ज़रूरी किस्म की इत्तला जो है वो मुझे आप तक पहुंचाना है, तो उसको पहुंचा लूं पहले. चलो जी,
0: ये है लाइका गोल्ड
2: और मुझे आपको बताना है कि फाइनल फ्यू डेज टू गो टू दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क. इट टेक्स प्लेस ऑन ओवो वेम्बली अरेना में ऑन संडे 27 सितंबर. डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM. टिकट्स के लिए diwalistory.com पर जाइए.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: चलो लगे हाथों आपको ये भी बता देते हैं कि Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact कीजिएगा Southall Travel को आज ही 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Anissa Nasir on Leica Gold Greater London.

0: और अगर आपने टीवी को सीने से लगा रखा है और शोज बड़े शौक से देखते हैं तो आपको बता दें एक और का इजाफा हो गया है। कैश ब्रांड न्यू गेम शो है इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ। जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप। ये था जरूरी मैसेज। एक और भी है वैसे, वो भी ना बता दूं आपको।
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स।
0: जी हाँ बिल्कुल, आप काजल को भी सुनिएगा और ये लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है इसके बारे में भी आपको बता दूं कि इस एपिसोड को होस्ट किया दीप राजा जी ने और दीप राजा जी बात करेंगे संगीता पांडे के साथ और एक्सप्लोर करेंगे मॉडर्न हरेसमेंट एट वर्क फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब एमेजन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
2: This is Anisa Nasir with The Big Show.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: हैरो इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: हमारी रक्षक है वो।
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
8: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September। फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
10: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर्स विद अमेजिंग डिस्काउंट 16 डेज चाइना फॉर 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट। कॉल सोना on 0208-951-0111।
11: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
12: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार।
13: My fans shout at football matches.
14: Oh, wake up!
13: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
15: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja talks about modern harassment.
16: A lot of the time, women, they can be unnecessarily harassed, hassled, not in a very nice way.
17: Subtle
16: way. You know it's happening. They know it's happening. When are we going to actually speak up and say,
17: now,
16: hang on, uncle, that wasn't right, mummy, do something.
17: Now is the time to do it,
16: right,
17: actually.
15: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Feel Good Classics.

0: Laika Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapko dila sakta 371.4 Pakistani rupees, 86.8 Afghan Afghani, 128.5 Indian rupees, 164.5 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is currently trading at £104.70 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: और मजाल है जो छह लोगों के अलावा किसी ने बूझने की कोशिश भी की होगी उल्टा पुल्टा क्या है आज हमारा गुजरे दिन खिजां के भेस गुलशन याद इतना आसान इतना पॉपुलर इतना जाना पहचाना गीत के बस मैं क्या बताऊं कमल शिवनानी जी उल्लास जी रिजवान शाह जी मीनाक्षी जी सलमा जी और एजाज जी आपने बूझा और रानी जी ने नहीं बूझा लेकिन कोशिश तो की ना सईदा जी ने भी कोशिश की लेकिन कसम से बहुत शुक्रिया सईदा जी आपका भी सुनीता जी की सुने ज़रा क्या प्यारा मैसेज भिजवाया है सुनीता जी कह रही घर में काम चल रहा था अब जैसे ही वो लोग निकले हैं घर से काम ख़त्म करके तो मैंने रेडियो ऑन किया और रेडियो ऑन किया तो कॉलेज का ज़माना याद आ गया और फिर आप तो जानते ही हैं उस उम्र में मुझे क्या पता अच्छा शायद थोड़ा थोड़ा पता हो सुनीता जी जो भी गीत आपको अच्छा लगे वो आप ही के नाम और बेहद शुक्रिया मैसेज भिजवाने के लिए अरुणा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू और उसके साथ साथ तारिक राहिल जी कह रहे हैं कि मैं मैसेज नहीं भिजवा सका लेकिन आपका साथ ज़रूर निभा रहा हूँ हमें तो साथ चलने का हुनर अब तक नहीं आया क्या बात है हमें तो साथ चलने का हुनर अब तक नहीं आया दिया अपने मुकद्दर का नजर अब तक नहीं आया
0: Non-stop classics. Classics. Like a gold. Punjabi Tadka with Anisa.
1: और एजाज जी कह रहे हैं 48 years old song and still one of the best song by किशोर जी एंड अमिताभ जी की एंट्री कहते हैं इज बेस्ट एवर आई एम ग्लैड यू एंजॉयड जब भी ये गीत सुनते और सुनवाते हैं बस मजे ही आ जाते हैं नहीं अब ये भी सुनिए मैं तो मेरा दिल भर जानी

0: मौसम होया है बेईमान और मैं ये बेईमानी नहीं कर सकती कि ये गीत सुनवाऊं और उसे रुबीना जी के नाम ना लगाऊं। उनका बहुत फेवरेट गीत है। मैंने कहा ना कि मैं अपने सुनने वालों की रग रग से वाकिफ हूँ। और शकीला जी मैसेज भिजवा रही हैं कि कैन यू प्लीज विश माय ग्रैंड डॉटर ईजा, क्या प्यारा नाम है, ईजा को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ईजा, हम डेडिकेशंस नहीं करते लेकिन बिटिया को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बेस्ट विशेस। गुड इवनिंग,
1: दिस इज अनीसा नासे विद द बिग शो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
3: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
2: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
3: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
5: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
10: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
1: Anisa Nasir with the big show, weeknights from 7 PM.

ये था हमारा आज का उल्टा पुल्टा। मौजे जख्मे सफर आसार, किनारा दुख है, बेसहारा ही चली चल के सहारा दुख है। तुम तो दुनिया की नजर में मेरे चारा घर हो, मैं तुम्हें कैसे कहूँ मुझको तुम्हारा दुख है। हम के मामूर हैं दुनियाओं की दिलजोई पर, हम किसे जाके सुनाएं जो हमारा दुख है। गुड इवनिंग।

0: अनजान अगर हो तो गुजर क्यों नहीं जाते, अनजान अगर हो तो गुजर क्यों नहीं जाते, और अगर पहचान रहे हो तो ठहर क्यों नहीं जाते। समीना जी का कहना है कि वाकई में ये गीत सुनकर कुछ कुछ नहीं बल्कि काफी कुछ हो जाता है, क्या नहीं बल्कि बहुत कुछ होता है। सही कहा आपने, ये वो गीत हैं जो एवरग्रीन कहलाते हैं, और ऐसे ही नहीं इनको सच्ची में माना जाता है, और ये इस लायक हैं कि इन्हें एवरग्रीन माना जाए। सदाबहार गीत आपके अपने रेट्रो स्टेशन यूके के नंबर वन रेट्रो स्टेशन पहले, और बहुत सारे स्टेशंस और भी आपके लिए लेकर आने वाला लायक रेडियो नेटवर्क। चप्पे चप्पे में, कोने कोने में आपको हम मिलेंगे, ना छुड़ा सकोगे दामन, ना नजर बचा सकोगे, जो मैं दिल की बात कह दूं तो कहीं ना जा सकोगे। कहते हैं कि उनके लफ्जों के मुकाबिल मैं भला क्या कहता, उसके लफ्जों के मुकाबिल मैं भला क्या कहता, मैंने हैरान ही रहने में सहूलत देखी। और एक शेर पता नहीं क्यों मुझे इतना प्यारा लगा है कि मैं क्या बताऊं आपको। कहते हैं फासलों को ही जुदाई न समझ लेना तुम, अगर आप एक दूसरे से दूर हैं तो आप ये मत समझ लेंगे भाई ये जुदाई है। जुदाई की और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी किस्में हैं। फासलों को ही जुदाई न समझ लेना तुम, थाम कर हाथ यहाँ लोग जुदा बैठे।
1: Lisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling today can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और इससे पहले कि मैं शशि कपूर जी पर पिक्चराइज गीत आपके साथ शेयर करूं, एक शेर और हो जाए। पिछली ताबीर के छाले हैं अभी पांव में, पिछली ताबीर के छाले हैं अभी पांव में, फिर नया ख्वाब सिरहाने से निकल आया।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Right now at Tesco Mobile, get your most powerful upgrade yet with the iPhone 18 Pro, the ultimate pro iPhone with 250 gigs of data, all for just £61.49 a month with club card prices, saving you £72. Even better, you'll also get a £100 Tesco gift card. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £1,295.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See TescoMobile.com/terms.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
1: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Get ready, UK. Sunil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: हमारी रक्षक है वो।
7: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
7: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September। फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
11: Europe and UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi lands और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
12: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
1: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे।
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: बिन
1: तू जो होता तो जिंदगी हमसे, तू जो होता तो जिंदगी हमसे, तलख लहजे में बात क्यों करती। वन एंड ओनली शशि कपूर जी। दरिया को अभी इल्म नहीं मेरी अना का, मैं डूब तो जाता हूँ किनारा नहीं करता। हर बार मोहब्बत में यही कहता हूँ खुद से, इस बार संभल जाओ दोबारा नहीं करना।
2: ये है लाइका गोल्ड। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Umeed karti hoon ye mera taiyar karta pulao, biryani, khichdi jo bhi isko naam dena chahe aap aapko bha raha hoga, pasand aa raha hoga. Rekha ho rekha जब से तुझे देखा तो नहीं है, मतलब आपके मैसेजेस के जरिए हम आपकी पर्सनालिटी देख लेते हैं, आपका प्यार देख लेते हैं, आपकी सपोर्ट देख लेते हैं. रेखा जी बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच. और जहीर खान जी, प्रोग्राम में आपकी बकरियों का जिक्र ना हो, छत का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम में क्या मज़ा रह जाता है, आप ही बताओ. अब मुझे बता रहे हैं कि एक बेचारी बकरी जो है ना, उसकी तबीयत ख़राब है. मेरी दिली हमदर्दी है बकरी के साथ. और आपको तो भी बहुत सारा थैंक्स कहना चाहिए, आजकल तो इंसान इंसानों को नहीं पूछते और आप जानवरों की सेवा में लगे हैं, खिदमत में लगे हैं. खुदाए पाक आपको इसका बहुत अजर देगा इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. बकरी को मेरी तरफ से हेलो हाय ज़रूर कह दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि अनीसा आंटी ने तुम्हारा हाल भी पूछा था. नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी. जहीर खान जी ऑल द वे फ्रॉम कराची पाकिस्तान में जाग कर इस वक्त छत पर बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं. सो वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू. आई एम डेफिनेटली वेरी लकी टू हैव लिसनर्स लाइक योरसेल्फ. और एजाज जी को देखो, बहन भाइयों को, मतलब वो आए हैं घर में, इन्होंने पता नहीं उनको कैसे भगाया है, क्योंकि मुझे मैसेज आया, कहते मैं ना थोड़ा शायद प्रोग्राम नहीं सुन पाऊँगा, भाई भी आ गया है, बहन भी आ गई है. मुझे ये बताइए कि उनको घर से आपने भगाया कैसे. कहते अनीसा आई एम बैक, वेलकम बैक. आपके बगैर भी प्रोग्राम सुना सुना हो जाता है, मेरे हर एक लिसनर के बगैर प्रोग्राम सुना हो जाता है. ये प्यारा सा गीत निमजे आपके नाम कर दूँ, चले आप पे क्या याद करेंगे, कर दिया. और शकीला नेडा जी, आपके भी नाम करने जा रही हूँ, एक प्यारा सा गीत सुनती रहिएगा. और ये तो आप सभी सुन लीजिए कि संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदासानी लाइव, जी हाँ, जे एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर, आफ्ताब शिवदासानी और सिंगर्स हैं अमन त्रिखा, उनके साथ हैं मायूरी पटालिया. संडे 27 सितंबर एट लेस्टर्स डी मॉन्टफोर्ट हॉल, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो. वाह जी वाह, क्या खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइक अ गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.
4: अनीसा नासिर विद द बिग शो, वीक नाइट्स फ्रॉम 7 PM.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट travelhubworld.com.
6: तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
7: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
8: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
9: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र.
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November.
10: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मां जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-228-7509
14: One day to go. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
15: संगीत साधना है,
16: साधना है।
17: संगीत आत्मा की आवाज है।
18: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं
19: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए
20: वो सिर्फ एक मंच नहीं वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान
21: सारेगामापा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से शनिवार और रविवार 7:30 बजे यूके आपके अपने जी टीवी HD और Z5 ऐप पर
14: Leica Radio Network proud hospitality partner Ragasan This is the number one Asian commercial group in London consisting of Leica Radio and Leica Gold
22: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: is like a gold. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
2: Oh, terrible weather.
1: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
3: See ya, good luck with the interview.
2: Oh, thank you, bye.
1: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
0: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
0: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
4: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
0: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
8: लाइक अ रेडियो Proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
9: Raat bhar na thame, na ruke, classic nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: लाइका गोल्ड वन परफॉर्मर
1: इसी के सामने तो प्रोसन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी
2: काउंटलेस पर्सनालिटीज
3: जिंदगी बर्बाद हो गया
4: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट
5: फंक्शन रखा हुआ है
2: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026
4: 29th October ओवर अरेना वेम्बली लंदन 31st October मैटियोली अरेना लेस्टर
2: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड न्यू सरप्राइजेस एक्सपीरियंस सुनील ग्रोवर लाइव ऑन स्टेज इन द यूके
4: प्रोड्यूस्ड बाय इमेजिनेक्स ग्लोबल एंड टिम्स मीडिया प्रोडक्शंस
2: सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected. Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee. Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
7: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
8: I left behind everything I knew.
7: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
8: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
7: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
11: We're finally going home for the wedding.
12: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
13: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
12: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
13: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
12: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
13: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
14: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
15: Classic Nagme. Aapke apne Leica Gold par.

कह गए गंगाराम हो मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम, हम तेरे हैं गुलाम, हम तेरे हैं गुलाम।

0: गए गंगा राम हो मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम।
1: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: ये है Like a Gold 10:35 AM.
1: जिंदगी बर्बाद हो गई है।
2: Get ready UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
1: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, दो साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी।
3: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
1: Banana na function rakha hua hai.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
5: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
6: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
5: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: Classic Nahume, aapke apne Leica Gold par.